मूर्त अजूनी संभव कल अंधकार दीपाई अंतर जामी जियन का दाता देखत त्रिपत आगाई।

सच दर्स समाई संतो गुण गावत गावत भय निहाला हर सिमरत त्रिपत आगाई संतो आत्म राम रविया सब अंतर कत आवै कत जाई संत।

तू है जिन जगत उपाया, कह नानक तू सदा अगम है, तेरा अंत ना पाया। सोर नार मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुरते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया। जी अजंत सब तुद उपाए, एक वेख परसन आया।

0: ततै सार ना जानी गुरु बाजहौ ततै सार ना जानी तिही गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रहण बिहानी गुर किरपा ते से जन जागे जिना हर मन वसिया बोल है अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिस नो आन दिन हर लिव लागे जागत रहण बिहानी माता के उदर मह प्रत पाल करे सो क्यों मनहो विसारी है
1: मन स्पष्ट बोलो उदर
0: माता के उदर मह प्रत पाल करे सो क्यों मनहो विसारी है।

ना सके जिस नाव अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिया कह नानक ए वडदाता सो क्यों मनो विसारिया जैसी अगन उदर मह तैसी बाहर माया माया अगन सब इको जेही करता खेल रचाया जा तिस भाणा ता जमया परिवार भला पाया लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया ए माया जित हर दिसरै मोह उपजै भाव दूजा लाया कह नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया हर आप अमुलक है मुल ना पाया जाए मुल ना पाया जाए किसे विटहो रहे लोक विल लाए ऐसा सतगुर जे मिले तेसो नो सिर सौपिए विचहो आप जाए जिसदा जियो तिस मिल रह हर वसै मन आए हर हर आप अमुलक है भागत ना के नानका जिन हर पल्लै पाए हर रास मेरी मन बनजारा हर रास मेरी मन बनजारा सतगुर ते रास जानी हर हर नित जपहो जी आहो लाहा खटे हो दिहाड़ी एहो धन तिना मिलया जिन हर आपे

जगत दिखाया गुर प्रसादी बुझया ता चलत हुआ चलत नदरी आया कह नानक सृष्ट का मूल रचया जोत राखी ता तू जग मह आया मन चाओ भया प्रभ आगम सुनया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदर बनया हर गाओ मंगल नित सखिये सोग दुख ना व्यापय गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना पिर जापय अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कह नानक प्रभ आप मिलया करण कारण जोगो

मन ना वसाया गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया कह नानक ए हो शरीर प्रवान होवा जिन सतगुर स्यो चित लाया ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मह जोत धरी हर बिन अवर न देख हो कोई हर बिन अवर न देख हो कोई नदरी हर निहालिया ए हो विस संसार तुम देख दे ए हो हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर ना कोई कह नानक एह नेत्र अंध से सतगुर मिलया दिब दृष्ट हुई ए श्रवण हो मेरे हो सच सुनना नो बठाए सच सुनना नो बठाए शरीर लाए सुनहो सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस समाणी

ससै सब जग सहज उपाया तीन भवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवै चुन लै मानक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै साच संभाले बिन

एको बुझै सूझै पत होय, ज्ञान ध्यान ले समसर रहै, गुरमुख एक बिरला को लहै, जिस नौ दे कृपा ते सुख पाए, गुरु द्वारा आख सुनाए, ऊरम धूरम जोत उजाला, तीन भवन मह गुर गोपाला, उगव्या अस रूप दिखावै, कर कृपा अपने घर आवै, ऊनव बरसै निजर धारा, उत्तम शब्द सुवारण हारा, इस एके का जाने पेओ, आपे करता आपे देओ, उगवै सूर असुर संघारै।

दयाल तू कार कर देखन हार दया करहै प्रभ मेल लैह खेन मह ढाहे उसार दाना तू बिना तुही दाना कै सिर दान दालद भंजन दुख दलन गुरमुख ज्ञान ध्यान धन गया बह झूरियै धन मह चीत गवार धन बिरली सच संचया निर्मल नाम प्यार धन गया ता जान देह जे राच है रंग एक मन दीजै सिर सौपियै पी करते की टेक धंधा धावत रह गए मन मह शब्द आनंद दुर्जन ते साजन भये भेटे गुर गोविंद बन बन फिरती ढूढ़ती बसत रही घर बार सतगुर मेली मिल रही जन्म मरण दुख निवार ना ना करत ना छूटिया बिन गुण जमपुर जाहे ना तिस एहो ना ओहो है आप गुण फिर पछुताहे ना तिस ज्ञान ना ध्यान है ना तिस धर्म ध्यान

सहज सुभाए, विद्या सोधे तातल है राम नाम लेवलाए, मानमुख विद्या बिकरदा बेख खटे बेख खाए, मूर्ख शब्द ना चीनई सूझ बूझ नह काय, पादा गुरमुख आखिए चाटड़िया मत दे, नाम संभालहु नाम संग्रहु नाम संभालहु नाम संग्रहु, लाहा जग महले सच्ची पट्टी सच मन पढ़िया शब्द सो सार, नानक सो पढ़िया सो पंडित।

ज्ञान की मुद्रा कवन कथी अले, घट घट कवन निवासो, काल कठीगा क्यों जलाई अले, क्यों निर्भव कर जाइए, सहज संतोख का आसन जान है, क्यों छेदे बैराई है, गुर के शब्द होमै बिखमारे, ता निज कर होवे वासो, जिन रच रचिया।

बाध क बिस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया अकलपत मुद्रा गुर ज्ञान विचारियले घट घट साचा सर्व जिया गुर बचनी अविगत समाइय।

0: गुरमुख धरती सच साजी तिसमें उपत खपत सो बाजी गुर कह शब्द रपै रंग लाए साच रताओ पत स्याओ कर जाए
1: बाजी बोला ही ठीक
0: साच शब्द बिन पत नहीं पावे नानक बिन नावे क्यों साच समावे गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि गुरमुख पवजल तरिय सर सुधि गुरमुख सर अब सर्वित जान गुरमुख परवृत

राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुरु प्रसाद अनंत पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाया राग रतन परवार परिया सबद गावन आया सबदोता गावहो हरि केरा मन जनी वसाया कह नानक अनंत होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओहो करे तेरा कारज सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनहो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा करता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सपत्सालाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वस्या वाजे सबद कनेरे कह नानक सते साहेब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटोह जिस दिया एह वडियाया कह नानक सुनहो संतोह सबद तरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच सबद तित कर सपागे सबद वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक।

अनद सुनहो वड पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन पहे सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सदगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सदगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी।

आप जी दे पाणे अंदर सुखां दी बतीत करवाणी गरीब नवाज अमृत वेले दे जागणे नाम दान इशनान दृढ़ करवाणा सतगुरु जी आप जी के हजूर सवेर तो सजे हुए दीवाना अंदर आप जी दी अमृतमई बाणी दा कीर्तन कथा विचार पातशाह जीओ शाम दे संध्या दे दीवाना अंदर आप जी दी

असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह भखसार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूरख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गाल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेच्छ माल भख खाहे, असंख निंदक सिर करहै भार, नानक नीच कहै विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कह है सिर भार होए, अखरी नाम अखरी सालाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग वखान, जिन एह लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुरमाए तिव तिव पाहे, जेता कीता तेता नाओ, विन नावै नाही को थाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, भरियै हथ पैर तन देह, पानी धोतै उत्तर सो खेह, मूत पलीते कपड़ होए, दे साबून लइयै ओह धोए, भरियै मत पापा कै संग, ओह धोपै नावै कै रंग, पुन्नी पापी आखन नाहे, कर कर करना लिख लै जाहो, आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवह जाहो, तीरथ तप दया दत दान, जे को पावै तिल का मान, सुनिया मन्या मन कीता भाओ, अंतरगत तीरथ मल नहाओ, सब गुण तेरे मैं नाही कोए, विन गुण कीते भगत ना होए, स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ, कवन सो वेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन से रुत्ति माहो कवन, जित हुआ आकार, वेल ना पाया पंडती, जे होवै लेख पुराण, वक्त ना पायो कादिया, जे लिखन लेख कुरान, थित वार ना जोगी जानै, रुत माहु ना कोई जा करता, सिर ठीकाओ साजे आपे जानै सोई, केव कर आखा केव सालाही, क्यों वरनी केव जाना, नानक आखन सब को आखै, एक दू एक सियाना, वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जा का हुवै नानक, जे को आपाओ जानै, अगै गया ना सोहै, पाताला पाताल लख आगासा आगास, ओड़क ओड़क पाल थके, वेद कहन एक बात, सहस अठारह कहन कतेबा, असलू एक तात, लेखा होए ता लिखिया, लेखा होए विनाश, नानक वड्डा आखिया, आपे जाने आप, सालाही सालाहे, एते सुरत ना पाईया, नदिया अतैवाह, पव है समुंद ना जानिया है, समुंद साह सुल्तान, गिरहा से ती माल तन, कीड़ी तोल ना होवनी, जे तेस मनहो ना विसर है, अंत ना सिफती कहन ना अंत, अंत ना करने देन ना अंत, अंत ना वेखन सुनन ना अंत, अंत ना जापै क्या मन मंत, अंत ना जापै कीता आकार, अंत ना जापै पारावार, अंत कारण केते बिल लाहे, ताके अंत ना पाए जाहे,
एहो अंत ना जाने कोए बहुता कहिया बहुता होए वड्डा साहिब ऊंचा थाओ ऊचे उपर ऊंचा नाओ एवड ऊंचा होवै कोए तिस ऊंचे कौ जाने सोए जेवड आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना तमाए केते मंगहै जोध अपार केते आ गणत नहीं विचार केते खप तुटहै वेकार केते लै लै मुकर पाहे केते मूर्ख खाही खाहे केते आ दुख भूख साद मार एह पे दात तेरी दातार बंद खलासी भाणे होए होर आख ना सकै कोए जे को खाएक आखन पाए ओह जाने जेतिया मोहे खाए आपे जाने आपे दे आखह से पे के ई के जिसनो बख्से सिफत सालाह नानक पात साही पात साहु अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापारिये अमुल भंडार अमुल आवह अमुल लै जाहे अमुल पाए अमुला समाहे अमुल धर्म अमुल दीबान अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फुरमान अमुल अमुल आख्या ना जाए आख आख रहे लेव लाए आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े कर है वखयान आख है बरमे आख है इंद आख है गोपी तै गोविंद आख है ईसर आख है सिद्ध आख है केते कीते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सुर नर मुन जन सेव केते आख है आखन पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे एते कीते होर करे हे ता आख ना सकहै केई के जे वड पावै ते वड होए नानक जाने साचा सोए जे को आखै बोल वेगाड़ ता लिखिया सिर गावारा गावार सो दार केहा सो घर केहा जित बह सर्ब समाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वावन हारे केते राग परी स्यो कहियन केते गावन हारे गावह तुहनो पावन पानी बै संतर गावह राजा धर्म दुआरे गावह चित गुपत लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गावह ईसर बर्मा देवी सोहन सदा सवारे गावह इंद इदासन बैठे देवत्या दार नाले गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़ नर खीसर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले गावन रतन उपाय तेरे अठ सठ तीरथ नाले गावह जोध महाबल सूरा गावह खानी चारे गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर के तारे से तुद नो गावह जो तुद भावन रते तेरे भगतर साले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी हो सी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई कर कर विखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी हुकम न करना जाई सो पात साहो साहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पात झोली ध्यान की करह बेभूत खिंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथे सगल जमाती मन जीता जग जीत
ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦਿ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜਹਿ ਨਾਦ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਸੰਯੋਗ ਵਿਯੋਗ ਦੁਇਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ ਲੇਖੇ ਆਵਹਿ ਭਾਗ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦਿ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ਼

महत दिवस रात दोय दाई दाया खिलै सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचै धर्म हदूर।

योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया अंक प्रकार की है बहुत जतना, शरीर कटाए हों में कर राती।

आश्रम करे, चंदन लेप उतारे तोए, अंध कूप में पतत बिकराल, करतूत पशु की मान जात, बाहर पे खंतर मल माया,

आप सुनंधा कैसे मार्ग पावे, कहां बुझारत बुझे डोरा, कहां बिसन पद गावे गंग, कह पिंगल पर्वत पर पवन, करतार करुणा मैं दीन बेनती करे, संग सहाय सो आवे न चीत, बलुआ के ग्रह पीतर बसे, दृढ़ कर माने मने प्रतीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, याहू जुक्त बिहाने कई जन्म, तू ठाकुर तुम पै अरदास, तुम मात पिता हम बारक तेरे,

0: अस्तर भगत साध की शरण,
1: नानक जब जब जीवे हर के चरण।
0: मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने, मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रियार पाद,
1: मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद,
0: मिथ्या चरण पर बेकार को तावे,

निरहतवर कछवर कमावत जानन हार प्रभु परवीन अवर उपदेश आपना करे जिसके अंतर बसे निरंकार जो तम्पा ने तिन प्रव जाता

जय प्रसाद बसे सुख मंदिर, जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, जय प्रसाद रंग रस भोग, जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै, जय प्रसाद सुख से सही जाय, जय प्रसाद तु सबको माने, जय प्रसाद तेरो रहता धर्म, प्रभ जी जपत दरगह मान पावै, जय प्रसाद आरो कंचन देही, जय प्रसाद तेरा ओला रहत, जय प्रसाद तेरे

जय प्रसाद अश्वहा तस्वारी जय प्रसाद बाग मलक थना जिन तेरी मन बंत बनाई तिसे ते आई जो एक अलख है जय प्रसाद करह पुन बदान जय प्रसाद तू आचार बिहारी जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप जय प्रसाद तेरी निकी जात जय प्रसाद तेरी पत्र है जय प्रसाद सुने करनाद जय प्रसाद बोले है अमृत रसना जय प्रसाद हस्त कर चला है जय प्रसाद परम गत पावे ऐसा प्रभ त्याग वरकत लागो जय प्रसाद।

जय प्रसाद तू पावे सच, जय प्रसाद सब की गत होए, आप जपाए जपे सो नाओ, प्रभु कृपा ते होए प्रगास,

साध के संग मिटे अभमान, साध के संग बुझे प्रवनेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध की महिमा भरने कौन प्राणी, साध के संग गोचर मेला, साध के संग आवे बस पंचा, साध संग हुए सब की रेन, साध के संग न कत हूं थावे, साध के संग माया ते पेन, साध

साध के संग न कबूता है, साध संग बस तगो चला है, साध के संग बसे थान ऊंचा है, साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग पाए नाम निदान, साध के

साथ के संग नहीं कचकाल, साथ के संग कलू खतर है, साथ के संग इहा उहा सुहेला, जो इच्छे सोई फल पावे, पार ब्रह्म साध रिद बस है, साथ के संग सुनो हर नाओ, साथ के संग न मनते बिसरे, साथ के संग लगे प्रमीठा, साथ संग पे आज्ञाकारी, साथ के संग मिटे सब रोग, साथ की महिमा भेद न जाने, साथ की उपमा ते गुण ते दूर, साथ की शोभा का नाही।

ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी

सफल ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार ब्रह्म ज्ञानी कह के रंग ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी सदा सज जागत ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद

ब्रह्मज्ञानी का कथन जायदाख्यर ब्रह्मज्ञानी की मित कौन बखाना है। ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार ब्रह्मज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता।

अपनी बड़ियाई प्रपावे मान गत पावे प्रपावे बिन साथ तेरा खै प्रपावे ता

आपस को कर्मंत कहावे, तन पूम का जो करे गुमान, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, तनवंता होए कर गरबावे, बालस कर्मान को ऊपर करे आस, सबते आप जाने बलवंत, कैसे न बदे आप अहंकारी, गुर प्रसाद जा का मिटे अभमान, कोट कर्म कराए हो तारे, अनक तपस्या करे अहंकार, अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे, आपस को जो पला कहावे, सर्प की रेंजा का मन होए, जब लग जाने मुझते कछोए,

जो किच करे सो प्रभु के रंग सस बाय होवे सो होए प्रभु का किया जन मीठ लगाना।

प्रभु के सेवक को ना पहुंचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, निक्की कीरी में कल रखे,

तम कहत्याय जो होआ हो बत सो जाने तिसकी महिमा कौन बखानो। आठ पैर प्रभ बसे हजूरे,

सदा सदा प्रभु के गुण गावो। चरण कमल से लागे प्रीत, एक ओट एक आधार, प्रभु की दृष्टि महासुख।

अमृत बचन हर के गुण गाओ, आठ पैर प्रपेखो नेरा, सुन उपदेश सिर दे बसावो, हलत पलत दोए लेहो सवारे, पूरे गुर की पूरी दिखिया।

0: सदा सलामत निरंकार
1: असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम कोर
0: असंख अमर कर जाहे जोर असंख कलवट हत्या।

अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासै होई सहाए अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवै ताए सब थाई होई सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होई सहाय दसां पातशाहियां दी आत्मिक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाह पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अन देठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाह जिन्हां सिंघां सिंघनियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुवासां नाल निभाही तिन्हां समूह शहीदां सिंघां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाह पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाह प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रे आए तो देग तेग फत है बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाए खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाह बख्शो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान प्रोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुग

हम पापी तुम पाप खंडन निको ठाकुर दिशा एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत।

पवित्र हो गए कि इस तरह जीवन पवित्र होवेगा। महाराज गुरु नानक साहब जी के बचन ने, जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल जीत। और तीसरा सी उस वेले जोगी, महाराज गुरु नानक साहब जी ने जोगी की गल भी की। साहब कहण लगे, जोगी जुगत ना जाने अंध, जोगी भी जेड़ा है वह अज्ञानता दे वस पिया होया अकलों अन्ना है, जीवन की रौ रीति नूं जानता ही नहीं। तीने उजाड़े का बंध, तिने ही बन लगे हुए ने, उजाड़ वल लोगों नूं तोर रहे ने, आप भी उजड़े ने ते दूजियां नूं भी उजाड़ रहे ने। जगत गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह जी ने इस करके लोगों नूं वहमां भरमां दे विचों कढ़न वास्ते महाराज जी ने चार वड्डियां प्रचार फेरियां कीतियां ने। बाबा देखै ध्यान तर, जलती सब पृथ्वी दसियाई, बजो गुरु गुबार है कर दी सुनी लुकाई, बाबे भेख बनाया उदासी दी रीत चलाई, चढ़िया सोधन धरत लुकाई। भावें गुरु नानक देव साहब जी दियां तुसी जन्म साखी दे विच प्रचार फेरियां पढ़ो, और सब तो पहला सतगुरु जी ने धर्म अस्थाना वल ही यह फेरियां पाईया ने, क्योंकि जे धर्म के पहरावे पा के धर्म के आगू जड़े बन के बैठे ने, जे जीवन उन्होंने सोहने बन गए तो प्रजा आपे उन्होंने अमन शांति रहेगी, उन्होंने जीवन चंगे होणगे। और जन्म तो लै करके जे आप अंत तक देखते हाँ, लोगों इन्हों लोगों ने इन्हों धर्म के आगुआ ने वहमां भरमां दे विच पा करके भरम जाल दे विच फसाया होया सी। आपां देख सकते हैं कि अज आपां जिहड़ा दिहाड़ा मना रहे हैं, जां संगत वालों श्री सहज पाठ का भोग पाया गया, भाई बहलू जी की याद विच ते ज्ञानी जी पासों आपां उन्हां दा जीवन भी सरवण किया है कि कैसे लोगों के जीवन जेड़े धर्म के आगू बन के बैठे से वह आप वहमां दे विच फसे सी ते दूजियां नूं भी फसा रहे सन। यानी कि जन्म तो लै करके अंत तक जीव की जिहड़ी जिंदगी सी, लोगों की जिहड़ी जिंदगी सी, वह वहमां ने घर किया होया सी। जे किते जन्म होना तो उस वेले सूतक की गल चल पैनी, बड़ी हैरानी हुंदी है कि कहण मात्र तां आपां कहिंदे आ कि आपां गुरु के सिख हाँ, पर सिख है कौन? साहब दे बचन हन, सिखी सिख्या गुर विचार। जिन्हां ने गुरु की सिख्या नूं सुन करके जीवन विच विचारिया, जीवन विच कमाया, सिख तां उही है ना। और जे हले भी साडे मनां दे विचों इह वहम निकल नहीं रहे कि तां जी बच्चे दा जन्म होया ते इह सूतक बन गया, यानी कि घर दे विच इन्ना समा औरत नूं सूतक दे तौर ते देखिया कि इह तां जी पवित्र नहीं हुई, और इन्ने दिन हुण इहनूं चौंके दे विच चढ़न नहीं देना। गुरु नानक देव महाराज जी के पावन बचन तुसीं रोज पढ़ते हो, जेकर सूतक मन्नी है सब तैं सूतक होए, गोहै अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए। महाराज कहिंदे ऐ भरम दे विच फसिओ लोको, जे तुसीं इह मन्नदे हो कि जीव का जन्म होया, बच्चे का जन्म होया ते घर दे विच सूतक है, तो फिर तां गोहे लकड़ी इन्हां दे विच तां अनेकां ही जीव रोजाना जन्म लै रहे ने। जेकर सूतक मन्नी है सब तै सूतक होए, गोहै अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जेते दाने अन्न के जिया बाजना कोई। जिन्ने तुसी अन्न दे दाने खा रहे हो इन्हां दे अंदर किन्ने जीव जन्म लैंदे ने। जेते दाने अन्न के जिया बाजना कोए, पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए। सब तो पहला तो तुसी ये देखो कि बाणी दे कथन मुताबक 42 लख जी जल में होते, जे 42 लख जी जल दे विच ने ते किन्ने जीव रोजाना जन्म लै रहे ने, फिर तो पानी नूं ही तुसी अपवित्र मन्नोगे ना। तो पानी नूं बंदा सुच्चा मन्नदा है कि मैं पानी दे नाल हाथ धो ले, मैं सुच्चे कर ले, मैं नहा लिया, मैं सुच्चा हो गया, फिर तो पानी ही झूठा है। पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए, सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवै रसोए, नानक सूतक एव ना उतरै ज्ञान उतारै धोए। महाराज कहिंदे पहला ते तुहाडा चौंका ही झूठा है, क्योंकि रसोई दे विच गोहियां दे विच किन्ने जीव जन्म लै रहे सन, लकड़ां विच किन्ने जीव जन्म लै रहे, ते जिहड़े अन्न दे दाणे तुसीं तैयार करके सवार के खाण लगे हो इहदे विच किन्ने जीवां ने जन्म लिया। पर कदे विचार कीती है

कोई क्या को कह बखानो, जिन जग थाप बताया जालो सो साहेब परबान। बाबा आया है उठ चलना, अद पंद है संसार वाह, सिरस चढ़ा लिखिया

गावे पंचो सांग बरंगण लावे सूट गुण मलारी तुनी कौन गावे आसा गुनगुनी ऊंचे।

हर जन राम नाम गुण गावै। जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावै। हर जन राम नाम गुण गावै। जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावै। रहाउ जो किछ करे सो आपे स्वामी, हर आपे कार कमावै। हर आपे ही मत देवै स्वामी, हर आपे बोल बुलावै। हर आपे पंच तत् विस्थारा, विच धातु पंच आप पावै। जन नानक सतगुर मेले आपे, हर आपे झगर चुकावै। हर आपे पंच तत् विस्थारा, विच धातु पंच आप पावै। जन नानक सतगुर मेले आपे, हर आपे झगर चुकावै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी, जिन्हां दे पावन पवित्र चरणां दीआं हाजरियां आप संगतां ने भरियां ने। सत्कार जो भाई जंग बहादुर सिंह जो पिछले दिनी अकाल चलना कर गए सन,

रहाउ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धा पुरखा किया वड्याईया। तुद विण सिद्धि किनै ना पाईया, कर्म मिलै नाही ठाक रहाईया। आखण वाला क्या वेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला।

रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जन हर हर शरदा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्तस है, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग

तै सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे।

हो, जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा वेसा हो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राग सूही अष्टपदिया महला पंजवा, घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। उर्ज रहो बिखिया कै संगा, मन है व्यापत अनेक तरंगा। उर्ज रहो